0: eiki makainga ko fia fite opulelu ko to ape etai mito ni makefa e faka hapo to e polokalama taulo mafaka ko speli ai ba henga nga we tonga o okalan mankau ses meta tisa no sila mehele tio tano fa po iniono planet fm ok de malama be foke ma o e polokalamani e a ho fitu o we wa fa he wike me he website www.planetaudio.org.nz/taulama-fakakospeli
1: आओ सारे कठे होके साइन दिलां दी पाईए दिलां दे विच पईयां दूरियां नेड़े हो मिटाईए ताड़ा अपना मनपसंद प्रोग्राम साइन दिलां दी हरेक फ्राइडे 11:35 तो लेके 1:30 तक हरपाल सिंह पाल दे नाल 104.6 प्लैनेट एफएम दे उत्ते सुनना नहीं भुलना साइन दिलां दी